0: 那时候给那么你刚开始，
1: 刚开始，
0: 热了，前那么你我做全部定期的嘞，
1: 热了，
0: 热了，前还有定期肯定有了，
1: 定期三度香，
0: 三度香的切菜了，
1: 南山。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ bakon nga jodo nong da pham do ka kana son sha do mo thon ni tu bakon nga son ta lo po kali ma ti nyua yin nga ro sel ma ti ji sin hum do
0: ha te
1: ta ne sha do ta ji sa li na yo ta san ta kom bakon nga nong da mo do
0: je su bu ta jun da che
1: lo po jun da ta san le ka kari ni na kali tu mo do
0: je
1: ta kom
0: pin tu sha do te che ne so ju gi ni jun ji che la ro ko ni ni dena mo ta ge da che cho la gali chimbu che yo ma ko huli mambu ji se ge ma ro ko la
1: dena
0: ge cha do ti ji zo bu jong da la pin chimbu to kyo sa
2: pin to bu cho da nga da na cha kan to da tro yin ta tro du cha kan pe man lo bo de ge yu ha jo ge de bo ga mu ji bo yu da se ba ji bo na ja pa te same same si ji bo tro da ha jo ge pin do chimbu da
0: ha la so da ri ji ge ting ji ro a ka lin ka te na la ye cha do da तो जने ने को जी रेउ जी रे आ कंडे जे टडे से यो ना स जिंदे छिंदे टडे से
2: तंगा सुता चुंबो क्लिनका नि टो चोंग गि पायु गटो तने चामदि टो ने मानकाम टो कचे कसा कन टडे यो तने मानसो करे गाव न ते टडे ती दोन त नवा चेबु विता टो त्रु टडे बो
0: चांदो इन टो छि रको जे तिंची के इन चुंबो क या चोनी ता चो तने रको ला
2: रे
0: तो चांदो को चोनी मानडा ले छे कोन ने हिन मानडा छन रंग
2: चेता जीसे द ना द ने चीज म चेता सुबा सुबा रे
0: चंदो को लोला
1: ता चेबा जिन गे ला जितो रे तने से ता चको हा खलो जिन ना ता लापा हितु ते से म चांदो टोशी दम के तिंची टोशी सुसु सिबा रे दर ता ते से चांदो टोशी राशि मंदो
0: रे रे रे
1: लबक तो जिने ने कुहा पाशा दो दुरो जिया जिने
0: जे छिनि तलिक लिंका ते के हजो क ताचो गी खुंखि रे सरा दे ने छिगी क टडे छिनि सिले निमा कजे टडे सिले
2: ता लिंका तुम वी नी ले निमा दिसा से टडे वे टोर तीसा जोले चेता मोयो क टो चेता छिनि रि तने ओ टडे से वे टडे मवे ना ओ ता लो चियार ते छन सुमा जी जिले दो ना ओ टे चो वी टो या जों तो सुमा के और जो भी तने तो जो तने लिखा कर के वो तो चीज तो तो जो नहीं तो माता घर से फायु ला सुमा के तो दों का बच्चे वो हुरी घर से फायु ला तो तो दों दी ता हाँ ता अगर फायु ला तो दों दी तो ही छे शुरी ता तीन छे के गुंगो का ना छे ना तो ना डोरे घर से फायु तने जागा मोबो ले जागा आं तो बो थोड़ी सुबह थोड़ी कसा कने जागा आं तो बो थोड़ी ता ये जिंदी तो हाथ या वो हो रही ता लो छे जो में बा तो तो जी हाच गबो रे ते तो दो जी तो तता चो सौ गत तो लो चे चो मु बचुमा गबो चे बो ता तरी लंका तरी आयु ला तरी लंका तरी तो जी ते ना दुं जो रे
0: जी
2: तो न्यू फा दूर सबा दूर ते ना ता तारे टारा थोन ता कसा कन तो दुं जी मु बो चा ती छरा छ ती दुं ता कसा कन तो दो ते गमो चे बो तरी जें दो रे
0: जी ता छेन रे ये ना ते दी थो तां बो ग ता सो सो ग जें छान रे जे यो रो को ते दुं गो जों ने ता पा तो ग चोजि दुंदु ता जिनचा यनांडा क्विजि यनांडा योमना कते योरगोला तने यांगंजु ग जि जगान सेरे तंद्रिक थोनी जदु छंदे शोसो
2: तत गाचे ताई पाले चसो छवा यजे छिमु सुरते गोला गुदु दति चदान यचो जजा जाय मि थोसि ते कोंग मा तमास योमा छवा जुस ता ता हाजु बियाबोरी जे तरी न गोल बाया को लेल मे चंगु को थर्मा को बरे नोला को बरे नाब को हाउ कोंगु को ता त्री जिन दे जिंचा चंग ट्र लो दारा मेचा तने केसा नमी तें तें दी गबु चेबु जरिता
0: गिन छे न ने कि नंग हमा तो ता सुनि बला जो छा दु छेबा छेशे र चंग
1: छेबा छेखि जिन ते मन द छ ता धरन के तु छवा गा छिन तने चको सागो दो सागन सेंटी मंदो गांव ची बो टोट है तो कासा जंचल लगा मुझे मान रो अने मुझे के जंचल लगा तो चौपाई और तो ये या कासा का रेंडर से सा टोट ये नो तो नो आशी बंदो
0: जी ला तब से क्यों मैं रही ना जी रूम का चौथा आठ तेरा सालों तो यूली

0: ओमा तो थों बासा दे यमोमा सुसी तो गोनी जुबु यमोमा छांग री चान हिसी पुचों नोबल हंजो गोरानों का हिंदों का जना हेला नवान ओमा तो बासा दे लता संदु इन मेली को तुत नाला बेबाचे जोंसन नी पावान न्योद ता देद सी पुन नोबल हंजो का मेनों नी मरमसा वेजे छुआन Pipa, pipa, cho, do jala, zewana, kecha jesi. Pipa ga,
1: guak, guak,
0: zewana, kecha jesi. Pinobun hunjo, jamu gawana. Pipa, pipa, cho la, mangyo la, kasi cho mangyo na.

ཁས Suggestion to the Deba Dina Chega Yopanani, Deba Dubat, Deba Dubate, Yadir de Roa, Yag Debat, Yadetela, Yasa, Yasin, Yigi Yopar. Deba Dubaji Sumba, Siatis, Deba Dubaji, Yigi Sumbatis, Yasa, Ya, Yigi Tigon, Sumbatic, Adirinoa, Dina Tupi Sumba, Siadigo, Tini Yigi, Adi, Dimbat. Dumbalan, Hamato, Siadi, Dumbate, Deba Dimbatel Cookie. अनि सजी एक ऐसे जिनको देवा दिमाग कहाँ रही सेदन रदेरवा राग देवा देर रदे तेरा रा ला ह्या सा से नहीं ये के ये बात नॉनी दिमाग लाने ह्या मातो से उन्हें चलो ह्या मातो ये बात ऐसे तो जिंजू ये यहीं से गिर ह्या ते जिंजू ये के गुनों मातो पारे इस तेरे ह्या दे पाप ना देवा दिमाग गुनों ता रा ला सा वो या ता देर तीन देवा दिमाग रदे को रा ला ह्या सा ये गुनों ह्या मातो पे की ये बात सुन सुन ra la sa oe te sun se yar xa ma tu jin ju yi ge che rin de je na ta ge so te ce dom na yi ge che yor wa de ba tambo sun ba ye ba ji yi ge nyin ba yi ge nyu ma te ni de ka nga ta na pa ma de ba tru pa ji yi ge sun ba ha de ba din ba ji xa ma tu bi yi ge yin sun ba ra la sa oe ya ta te chu bu dom na yi ge chu bu yo ba te che re se de ta ka se ba ba xe ji ge ta jin ju yi ge che rin de se mi ji yi ge kan ji ji sun ju bi ge ta jin ju yi ge che se ya de ta ओया ये के नदचु बो यंबन देस यार वो तीन दो निक नॉलेज चल जाता जिंजु चु बो कांग कांग यंबन रे रे गेंद देवा के नॉन अने चुशुनी ओ तनी साक्षी चिंदू आ वो देर नदचु रजना ता जिंजु ये के चु कांग आ दाना पामा राला सा वो ते जिंजु ये के चु यंबन देते हैं ता तीन दिलो अने जिंजु ये के चु बो से आ के जिंजु ते कौ chani tabare chana, ane ko njuyi chani tabare, mi yege nanji, njuyi mi yege nanji, jisi njuba yinza, jinju se yashi. Yang jinju tela, tani yinba ko mi yin kanyo re chana, ane tatenge yege yisi, ma ta ya ta ratatata anubu tena ki tena, tatenge yege yang se gyo re. Mi yege talatengi yege, mi yege ki jisi njubi yege yinba yasa, tatenge yege se gyo. Ta tela gen chata jaya la soba teso ke yang, ko yege mambo ji ko tsichin chikta njubi ke, dra dan tenji koro ten, tada, को जिंजु की ये गए तक शेबी जिसे जी को थाते हैं से ठंडे क अने जहीं जापान दुक देश तंग के चांस ही जापान ना को ची क्रोंग ची जो क्रोंग तो ने तादेज को आने जापान ना अने मी ये के थामा जिस ने मी ये के बाय तं थाते हैं से यार तीन थाते के ये के से ना जिंजु की ये के से यार देंजी चाहते हो ता चावन दे ला यंग जी ट्रिब्यू दो जी लिखे जो भी वहां बोगो नोला तेलन जब कांडे जायो बारे से ना कांगा ताना पामा राला सानम जिंजु चे से ने चिकन निगो तो ने देखी जा रही थेम संबोटा के चाव खोरांग नॉन चिर जन अनि देबा रे रे रे रे जे देबा जे चंगा के थोनी अनि को जिंजु चुबो दे रे रे तें हरो वा देर तोस ची अनि ली तंबो आता बिन सेम बाइन नंदर तोस जिंजु चुबो दे ठेका के नारो सो ता देमो के थोनी नीज जम मदे आता बिच जोर तें जे ये बाइन जा लिखी जिंबो आंग आंबो के नॉन पा निंगी जिंगी ससर ठिंग ठिंग को नी कांग आ ता ना पा मा रा ला सा नम जिंजु चु से नी जिंजु चु जो ट्रांसा मा से जिंजु चुबो रे रे रे ते अनि kasabu goni ene jema gano man rahi jandu wa tindir jinju te teka re re gino ene ngizu ni sumba waya tenri ji chante pa wachi res jitere tene shoji yenpa ji chere se dira di kasali jinju ju goden du mahi yung kasala mingi yige kanji jisin ju pi yige yenpa yanza jinju se an deyang kanisa e melong gano la yang chi tribido jika ane tanju gano jaba kanisa e melong gano la ya sibo yore mingi yige kanla nju se ne jinju se dira ko mingi yige kani amare pa mingi yige Soma ji kumbo ki jisun jubayu, jubarayas, tindir jinju se. Tindir miki yige kanji jisun ju se yande, tsayi chane ten ten maten den raya amare. Ko jinju se yande, ko ten ten maten kantarayang, ani koro draga jetan ke chane, draga yinjusa ke chane, ani jinju re re yande miki yige sanjibo soma ki koro jisun, ani jar chupa, ani koro jadang toni yang, koro ma lato runga.